0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਔਰ 6:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को

0: आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said, this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
3: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. I just want to say a very good evening to everybody this morning here and this evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country.
2: U.S. President's remarks came amid Mr. Rubio's four-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval yesterday. President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held in Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Bhushan,

अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का, अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने चले थे नींद ही गवा बैठे। हाय फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज फिर तो हाजिर है जी तुहाडा रेडियो दोस्त आरजे पवन लैके प्रोग्राम दोस्तों सजरी सवेर। बाकी दोस्तों साडे इस जिंदगी दी रफ्तार अंदर इंसान इस कई बार वधिया मुकाम तां हासिल कर लैंदा है, पर फिर भी साथियो जिंदगी दा असली सुकून वह कई बार उसनू लभन लई उसते उसनू महसूस करन लई हमेशा कई बार बेचैन जिहा बनया रहिंदा है, क्योंकि साथियों उस मुकाम नू हासिल करन लई कई बार असी वह कीमती समा अपने नू नहीं दे पाउंदे जिन्ना असी देना चाहुंदे सी। जी साथियों जी, हरेक दा जी सबदा करदा कि अपने रिश्तेदारां कोल अपने पुराने यार मित्रां कोल घंटो घंटी जाके गल्लां मारीए गलबात करिए जिंदगी दे इस खैर चक्करां दे विच दोस्तों साडी अपनी इस मशरूमियत दे विच कई वार असी उन्हां नूं उन्ना समा नहीं दे पाउंदे। खैर साथियों, मैनूं उम्मीद है कि अज तुसी अपने किसी खास यार दोस्त मित्र रिश्तेदार नूं कुछ समा जरूर दोगे मिलके, ना सही तुसी एक फोन कॉल राही भी तुसी उसका हाल चाल पूछ सकते हो। सो जी मैनू साथियों ये भी उम्मीद है कि जिहड़े अज साडे यार दोस्त मित्र ने हुण तक जिहड़ी संडे की छुट्टी तो बाद जिहड़े मंडे दे साडा वर्किंग डे है उस दीआं तैयारियां दे विच रुझ गए होणगे और उन्हां जिहड़े रूटीन दे काम है सवेर वाले वह भी उन्होंने शुरू कर दिते होणे। कई मेरे यार दोस्त मित्र इस वक्त सवेर की सैर का आनंद ले रहे होंगे और कई यार दोस्त मित्र जिहड़ी सवेर की चाह यानी कि बैड टी का भी आनंद ले रहे होंगे। सो साथियों, जिंदगी का सफर इस तरह चलता रहता है और जे मैं साथियों प्रोग्राम सजरी सवेर दी सफर दी गल करा तो अज भी दोस्तों तुहाडे नाल करांगे ढेर सारियां कुछ खास गल्लां ते गल करांगे अज दे खास दिन दी भी और नाल ही साथियों गल करांगे बठिंडा नगर निगम दीआं 26 मई नूं होण जा रहीआं चोणां दी जानकारी बारे ते जाणांगे जी प्रशासन वल्लों किस तरह दे ने इंतजाम। और साथियों फोन लाइन ते इस बाबत गलबात लई साडे नाल जुड़नगे सरदार अमनदीप सिंह मावी जो कि पीसीएस ने पंजाब सिविल सैक्रेटरी बठिंडा।

0: CAPF and CGHS मुलाजमा दे लई हुन कैशलेस मेडिकल सुविधावा मौजूद ने पर किथे
1: मालवादा प्रमाणित हॉस्पिटल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा वधेरी जानकारी लई कॉल करो 0164-521-2000
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए
4: FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो 25 मई दिन सोमवार शाम 5 अपना विरसा अपना सभ्याचार दा विषय होवेगा लंबी ते उच्ची हेक दा पंजाबी लोक गायक सुरजीत बिंदरखिया

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा सुनना ना भुलना 25 मई दिन सोमवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: आकाशवाणी एफएम बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सजरी सवेर।
1: देश मेरा रंग रेज़ ये बाबू।

आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियों मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत तुसी सुनोगे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप दी अगली कड़ी।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत, जिथे जीवन दे गूढ़े सच, करम धर्म अते आत्मिक ज्ञान नाल भरपूर ए विशेष प्रस्तुति तुहानू जोड़ेगी श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल संदेश नाल।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सुनना ना भुलना 25 मई दिन सोमवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: ओवी ऐप तो
1: फसिया अनजान ऐप्स तो बचो।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: CAPF NCGHS मुलाजमा दे लई हुन कैशलेस मेडिकल सुविधावां मौजूद ने, पर किथे?
5: मालवादा प्रमाणित हॉस्पिटल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा। बधेरी जानकारी लई कॉल करो 01645212000।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ 8:15 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੌਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 8:30 'ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख

0: करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।

0: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीजफायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति

फेट फेट पीछे फेट फेट मोटरा फू फू लाई लगी ते मैं एक हट्टी तो पीता ठंडा पानी हट्टी वाले टका मंगया मैनू होई हैरानी मैं क्या पैवे चो पानी मैं क्या पैवे चो पानी तुसी ओ डाकू पारे ये ना कोई शहरिया समझी दंद तोड़ दऊं सारे

चानन किते भी नजर ना आवे लोका नेर मचाया दाड़ी मोछ मनाई मुंडिया कुड़ियां वाल कटाए मुंह ते मल कटा मुटियारा उच्चे घगरे पाए फिर दे जोड़े पाके उथे पावा दे विच बावा वेख के मैं पड़िया दे चाले मुंह विच उंगला पावा लै भई एक नवी मुटियार व्याई पी के लैवन सोडा जांदी जांदी मार गई ओ जान के मैनू मोडा जांदी जांदी मार गई ओ जान के मैनू मोडा मैं कहा कि एक नू रोना उते आया वा सारा

पैंदा डोले डोले हाथा मते पुंड बिसी आज पैंदा डोले डोले हाथा कौन सजी ले दी तार उंदी पईए मारो मार नाइया नैना दियां कान ते

बाजीराव मस्तानी इस फिल्म में आपने सुना श्रेया घोषाल और वैशाली मादे की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे, जैकी वंजारी का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: the drum. Buddy, buddy, now. Buddy, now. Buddy, now.
1: शाम रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर

0: फिल्म देवदास का ये गीत था। गीत और संगीत थे पंडित बिरजू महाराज के। पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्ण मूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, भारतीय सिने जगत के जाने माने अभिनेता और फिल्मकार सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। इनका असल नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे शख्सियत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लगभग 5 दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में काम किया। एक ही रास्ता, मदर इंडिया, सुजाता, गुमराह, वक्त, हीरा खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, छाया, गबन, जाग उठा इंसान, आम्रपाली, पड़ोसन, रेशमा और शेरा, ऐसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में सुनील दत्त ने दी। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सुनील दत्त ने अभिनेत्री साधना, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयंती माला, नूतन और नरगिस जैसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ बेहद सफल फिल्में की। बाद के दशकों में वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस उनकी शरीके हयात थी। नम्रता दत्त, प्रिया दत्त उनकी बेटियां हैं और सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त उनके बेटे हैं। आज ही के दिन 25 मई 2005 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तमाम पुरस्कार तो उन्होंने अपने नाम किए ही। 1968 में अभिनेता सुनील दत्त को पद्मश्री और 2005 में मरणोपरांत फाल्के रत्न पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया।

द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी कमाल खान की, रजत अरोरा के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। श्रोताओ, आज सिनेमा जगत के यानी भारतीय सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर था। इनकी मुलाकात संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई और दोनों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनका संगीत आज भी उतना ही मशहूर है। लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन के साथ साथ तमाम और वाद्यों को बजाना सीखा। 1963 में इस जोड़ी ने फिल्म पारसमणि के लिए कालजयी गीतों को स्वरबद्ध किया। इससे पहले संगीतकार लक्ष्मीकांत ने बतौर बाल कलाकार फिल्म भक्त पुंडलीक और 1950 की फिल्म आंखें से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के पत्थर के सनम, इज्जत, साजन, अनजाना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गीतों को संगीत से सजाया इस जोड़ी ने और लगभग चार दशकों तक सुरीले संगीत का उनका सफर चलता रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 फिल्मों से अधिक में इन्होंने गीतों को संगीत से सर्वद्ध किया। हम संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल हैं हिमेश रेशमिया का संगीत है।

तो ये था कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं इजाजत आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है, तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा सुनना ना भुलना 25 मई दिन सोमवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा सुनना ना भुलना 25 मई दिन सोमवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: उपच करे पता तो वे जतिन गया दे छतरी
1: औंदे साल चन्नो बेच नरमा को पानी देऊगा उड़ा मिर्था थरी के वारा लानी बिलो मन मेरा पासुर बस होर साल तक जती कार ते मुरबे आनू आउनी कारिया ले आतू हैं कांगोरे रंग दा टौर बने जाऊनी।

0: एफ एन सी जी एच एस मुलाजमा दे लई हुन कैशलेस मेडिकल सुविधावां मौजूद ने।
1: मालवादा प्रमाणित हॉस्पिटल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा। वधेरी जानकारी लई कॉल करो 0164521200।
2: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, मिति 26 मई, दिन मंगलवार, शाम 5:30 बजे, प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत तुसी सुनोगे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप दी अगली कड़ी।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 26 मई, दिन मंगलवार, शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत, जिथे जीवन दे गूढ़े सच, करम तरम अते आत्मिक ज्ञान नल भरपूर ए विशेष प्रस्तुति तुहानू जोड़ेगी श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल संदेश नाल।
1: श्रोतियो, आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण बारे तुसी भी साडे नाल मशवरा कर सकते हो। तुसी अपने नेक सुझाव साडे नाल सांझे करन लई खत सानू लिख सकते हो। साडे पते इंचार्ज प्रोग्राम श्रोता मंच, मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बठिंडा ते, अते खता दे नाल ही साडे WhatsApp नंबर 7171773146 दे उत्ते भी WhatsApp सुनेहा सानू भेज सकते हो। इस दे नाल नाल तुसी चलदे प्रोग्राम विच 0164-2240-331 नंबर डायल करके भी अपने कीमती सुझाव साडे नाल सांझे कर सकते हो। सो जरूर सुनो आकाशवाणी FM बठिंडा दा प्रोग्राम श्रोता मंच ते देओ अपने नेक सुझाव। प्रोग्राम दा समा हर मंगलवार दोपहर 1:15 to 2 PM तक अते शुक्रवार दोपहर 12:10 to 1:10 PM तक।

मैं धन्नवाद करना चाहूंगा साड़ी टैक्निकल टीम का, प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी। हाँ साथियों, हरभजन मान के इस गीत के नाल ही प्रोग्राम गीत पिटारा का वेला हुण मुकता। अपने रेडियो दोस्त पवन तो इजाजत। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 MHz ते हुण तो थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे तुसीं सुणोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। 11:05 ते रिले करांगे एफ एम रेनबो दिल्ली दे प्रसारण। सुणदियां अगला प्रसारण, सुणदियां हिंदी विच खबरां हुण तों थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार

0: और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से जुड़े लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपए और डीजल 95.20 रूपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। यह स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 874 अंक के उछाल के साथ 76,289, जबकि निफ्टी 264 अंक बढ़कर 23,983 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। प्रोग्राम है आपका जाना पहचाना बॉलीवुड रेल्स, जिसमें लेकर आते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरें। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। साथ में होता है एक नन्ना मुन्ना सा सवाल, और जिसका जवाब देकर आप बन

आते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और क्या होता है, और होता है एक या दो या तीन या ज्यादा सेलिब्रिटीज का बर्थडे, जिनका बर्थडे हम मनाते हैं आपके साथ ऑन एयर, करते हैं उनके बारे में कुछ बात और साथ में लेकर आते हैं बहुत सारे नकमे, अच्छे, बहुत अच्छे या फिर बहुत बहुत अच्छे। तो बस रहिए हमारे साथ इस पूरे एक घंटे, क्योंकि बॉलीवुड के गलियारे से आज बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए हमारे पास।

0: जी हाँ, यदि बात हाथ मिलाने की हुई है ना, तो बताएं आपको कि हमारे जो खिलाड़ी कुमार हैं अक्षय कुमार, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है इंटरनेशनल नामों के साथ. जी हाँ, हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर ल्यूक थंबर के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है. और आप पूछेंगे भाई ये क्या कारण हुआ, ये कारण ये हुआ कि अब अक्षय कुमार ने हाथ मिला लिया है इनके साथ एक साइंस फिक्शन फिल्म के लिए. जी हाँ, इससे पहले अक्षय कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अब से बहुत सारी फिल्में इनकी आपने देखी हैं जिसमें कॉमेडी भी है, सीरियस मूवीज भी हैं और रोमांटिक फिल्में भी हैं, लेकिन इस बार अक्षय कुमार साइंस फिक्शन में एंट्री लेने जा रहे हैं और इस तरह से बॉलीवुड का पूरा गेम बदलने के लिए तैयार हो गए हैं एक बार फिर से अक्षय कुमार. अभी तक एक्शन और कॉमेडी आप देखी है, लेकिन इस बार है एक नया जोनर. और वो क्या है, वो ये है कि अक्षय कुमार भारत की पहली एलियन थ्रिलर फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसमें वो खुद एलियन से सामना करते हुए नजर आएंगे. अब आप कहेंगे ऐसा कैसे भाई, ऐसा इसलिए कि फिल्म के जो टाइटल है ना, उसके बारे में भी हमें पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि ऐसा वाकई में हुआ है. नाम क्या है फिल्म का, बताएंगे जरूर आपको बताएंगे. फिल्म का जो नाम फिलहाल फाइनल हुआ है उसका नाम है समुक, और इसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभा रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर ल्यूक थंबर के साथ हाथ मिलाया है. बड़े पैमाने पर बनेगी ये फिल्म और बड़े पैमाने पर दिखाई देगी हमें. फिलहाल हमें जो दिख रहा है ना, वो है ट्रैक नंबर 2, वो अक्षय कुमार की फिल्म दे दनादन से. तो चलिए एंजॉय कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ.
1: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: और अब खबर ऐसे फिल्म से जिसका इंतजार है सभी को बहुत बेसब्री से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणबीर कपूर की रामायण की। 4,000 करोड़ की इस फिल्म को पहले डिसाइड किया गया था कि ये रिलीज होगी दिवाली पर, है ना। लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है इस समय इंडस्ट्री का, तो सबको ये लगता है कि कोई भी वीकेंड आता है या कोई भी हॉलीडे टाइम आता है ना, तो उससे पहले पहले फिल्म रिलीज कर दी जाए ताकि वो जो छुट्टियों के दिन होते हैं उसका फायदा उठाया जा सके भरपूर। और यदि त्यौहार होगा होली दिवाली का, तो जाहिर सी बात है काफी सारी छुट्टियां होंगी और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी टाइम मिलेगा फिल्म देखने का। इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि इस फिल्म को जल्दी रिलीज कर दिया जाए, और हो सकता है कि अब ये फिल्म दिवाली से पहले यानी 30 अक्टूबर 2026 को रिलीज कर दी जाए। आपको बता दूं कि इस फिल्म में रणबीर कपूर बने हैं श्री राम और माता सीता का किरदार निभा रही हैं कौन, साही पल्लवी। जी हाँ बिल्कुल, लोगों ने काफी पसंद किया है उन्हें। और इसके साथ साथ हमारे 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल साहब हैं इसमें हनुमान जी के रोल में। तो अब आपको बताना है जब ये फिल्म रिलीज होगी ना कि आपको फिल्म कैसी लगेगी और कौन सा किरदार किस रूप में आपको सबसे अच्छा लगा, है ना। मुझे भी इंतजार है इस फिल्म के रिलीज होने का, आपको भी होगा, लेकिन फिलहाल आपको इंतजार होगा एक और प्यारे से ट्रैक का। तो चलिए, बहुत ही सुपरहिट ट्रैक इस समय चल रहा है, हालांकि ये भी एक रिमिक्स है। बहुत टाइम पहले एक फिल्म आई थी बाहर आने तक, उसमें ये गाना था और अब उसे रिमिक्स करके लेकर आए हैं आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और साथ में है सारा अली खान और एक और एक्ट्रेस है ना, जल्दी से आप बता सकते हैं उसका नाम। जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, रकुल प्रीत सिंह।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और आपके साथ हूं मैं आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

0: जी हाँ बिल्कुल, लेश हुआ है आपको बॉलीवुड की खबरों से, बॉलीवुड के सितारों से। और ऐसे ही एक सितारे हैं कुछ खास, और ऐसे ही सितारों से भरी एक फिल्म आने वाली है, रामायण। जी हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ रामायण की, लेकिन साथ में है बॉलीवुड का सवाल। जी बिल्कुल, तैयार हो जाइए आज के बॉलीवुड क्विज के लिए, क्योंकि अब जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो इसी फिल्म से है और इसी फिल्म में उपस्थित एक जबरदस्त सितारे से है। आपको ये बताना है कि रामायण में, जो रणबीर कपूर की रामायण आ रही है, उसमें हनुमान जी का किरदार कौन से कलाकार निभा रहे हैं, कौन से हमारे सुपरहिट स्टार हैं जो इसमें हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। आपको बताना है अपना नाम, उनका नाम, और साथ में अपना फोन नंबर लिखकर भेजना है ताकि हम आपको बना सकें सही जवाब के साथ बॉलीवुड सरताज। और ध्यान रखिएगा, अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है माय लिसनर्स जो नंबर लिखकर भेजते हैं वो उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं होता और उसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाती। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड रील्स अपने होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि के साथ, और आज का सवाल है बहुत ही आसान। हनुमान जी का किरदार कौन से एक्टर निभा रहे हैं अपकमिंग फिल्म रामायण में?
1: हश हश

वेल, बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अब जो खबर मैं आपको देने वाली हूं ना, वो काफी चर्चा का विषय बन चुकी है और उसकी वजह है मौनी रॉय। जी, वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जो रिलीज होने वाली है 5 जून को, है जवानी तो इश्क होना है। जी हाँ, बिल्कुल, इस फिल्म में के साथ मौनी रॉय आ गई है चर्चा में और वजह ये है कि इस फिल्म में वो बनी है वरुण धवन की मम्मी। उफ, ये क्या हो गया। मौनी रॉय इज जस्ट 40 एंड जो वरुण धवन है वो है 39 की, और उसके बावजूद मौनी रॉय को उनकी मम्मी बना दिया है। सोशल मीडिया पर ये जो चर्चा है ना, अच्छी खासी मतलब कंट्रोवर्सी बन गई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मौनी रॉय को उनकी मम्मी का रोल निभाना पड़ रहा है। और देखिए ना, कितनी अच्छी अच्छी फिल्मों में वो आई हैं, नागिन बनके उन्होंने जो टेलीविजन इंडस्ट्री है उसमें अपना एक अच्छा परचम लहराया है। उसके बाद बहुत सी फिल्मों में आई, अक्षय कुमार की हीरोइन बनकर आई, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वरुण धवन की मम्मी बनना पड़ रहा है। वेल, मे बी कि फिल्म में कॉमेडी का कोई एंगल हो और या फिर कुछ और हटके फिल्म की स्टोरी हो जिसकी वजह से वो उनकी नकली माँ का किरदार निभा रही है, ऐसा पता चला है फिल्म के प्रोमो से, है ना। तो ये सही बात पता चलेगी 5 जून 2026 को जब ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन तब तक हम कर सकते हैं सिर्फ इंतजार। और ये जो सोशल मीडिया पर चिंगारी भड़काई है ना हमारी मौनी रॉय ने, वो पत उसका जो इंतजार है या उसका जो अंत है वो होगा 5 जून को। तो चलिए, आप और हम मिलकर करते हैं इसका इंतजार, लेकिन तब तक सुनते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी हाँ, बॉलीवुड में एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉलीवुड रील्स में और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रश्मि जी। दोस्तों, आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है बहुत ही आसान है और वो ये है कि हनुमान जी का किरदार फिल्म रामायण में कौन निभा रहे हैं। आपको बताना है उनका नाम, अपना नाम, अपने शहर का नाम और साथ में अपना फोन नंबर लिखकर भेजना है 9868107070 पर।
2: Dime que me duda, dime que me duda, dime que me duda, dime que me duda.

वेल, आज है 25 मई और आज के दिन बर्थडे मना रहे हैं इंडियन सिनेमा के एक ऐसे डायरेक्टर, एक्टर भी रहे हैं वो और साथ साथ टेलीविजन होस्ट भी रहे हैं, लेकिन फिल्मों को प्रोड्यूस करने के नाम पर और डायरेक्ट करने के साथ ही वो काफी ज्यादा फेमस डायरेक्टर माने जाते हैं, प्रोड्यूसर माने जाते हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जी हाँ, फैमिली ड्रामास हो, रोमांसेस हो या फिर लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग हो, हमारे करण जौहर साहब को ना फिल्म इंडस्ट्री में काफी पसंद किया जाता है। यदि हम उनकी फिल्मों की बात करें तो कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और ए दिल है मुश्किल, इसके साथ ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर और भी बहुत सारी फिल्में, जैसे कौन सी आई थी आप बताइए और कौन कौन सी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, घोस्ट स्टोरीज, लव स्टोरीज, बॉम्बे टॉकीज हो या फिर कल हो ना हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। ब्रह्मास्त्र के साथ भी वो हमें हमने देखा उनको, उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, और भी बहुत सारी फिल्मों के साथ करण जौहर पसंद किए जाते हैं। तो आज करण जौहर मना रहे हैं अपना बर्थडे और हम यहाँ पर यानी कि एफएम रेनबो के स्टूडियो से उनको कर रहे हैं बहुत सारी विशेस दे रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ साथ चाह रहे हैं कि प्लीज़ करण जी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और भी लेकर आइए, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे ऑडियंस हैं, उनको और भी अच्छी फिल्में देखने को मिले। फिलहाल आप ही की फिल्म से ये ट्रैक सुना रही हूँ माई लिसनर्स को, लेकिन हमारे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल मत भूल जाइएगा कि केवल करण जौहर जी का बर्थडे नहीं है आज, एक और बहुत ही फेमस एक्टर हैं उनका भी बर्थडे मनाएंगे, लेकिन वो कौन है जानेंगे इस ट्रैक के बाद।

0: जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करण जौहर के अलावा एक और एक्टर हैं जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। यदि हम उनकी बात करें तो बाल कलाकार के रूप में काफी प्रसिद्धि पा चुके थे ये, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में बड़े होकर भी उन्होंने काफी एक्टिंग की है। राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और साथ साथ सिंगर कंपोजर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुणाल खेमू की। गोलमाल फ्रेंचाइजी हो या फिर कलयुग, ढोल, लूट केस, मलंग, गो गोवा गॉन, जी ध्यान आ गया ना आपको कुणाल खेमू कौन है। साथ में सोहा अली खान के हस्बैंड हैं और बहुत ही नामी गरामी कह सकते हैं कि एक्टर हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ना उन्होंने अच्छी खासी पहचान बनाई है अपने बचपन से ही। तो आज कुणाल खेमू को हमारी ओर से बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेज उनके बर्थडे पर। आप यूं ही काम करते रहें, अच्छी अच्छी फिल्में हमें दिखाते रहें और अच्छी अच्छी एक्टिंग करके नाम कमाते रहें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं।

अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जी हाँ, वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है। यदि आपने अभी तक हमारा क्वेश्चन नहीं सुना है तो आपको बता दें कि आज का सवाल बहुत ही आसान है। वो कौन से एक्टर हैं जो रामायण फिल्म में हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं? आपको बताना है उनका नाम, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, और उसे भेज देना है 9868107070 पर।

लिसनर्स हैं जो जुड़े हैं, जिसमें है रेहाना साफिया, प्रवीण लिख रही हैं, जहांगीर जहांगीर पूरी दिल्ली से। इसके अलावा एक सही जवाब आया था कान्हा का मेरठ से। मोहम्मद कासिम कीरतपुर से, सनी देओल लिखकर भेजा है, संजय दर्शन ने मुंबई से, जहीर अहमद मुजफ्फरनगर से लिख रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद फुरकान है, मनिका है नामची सिक्किम से। इसके अलावा कौन है, यह धर्म भाटिया रोहतक से, राजपाल मुखर्जी और कांठ से मोहम्मद फुरकान है। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सलीम मेरठ से लिख रहे हैं। और ये कौन है, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से। इनका बिल्कुल सही जवाब था, दानिश खतौली से थे। लेकिन क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है तो बस आज के लिए इतना ही। लेकिन आपसे वादा कर रही हूं कि 1:05 पर आपसे फिर मुखातिब होंगी और तब आपके लिए लेकर आऊंगी प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। और आई होप कि उस प्रोग्राम में भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर्स। यदि आपका भी कोई इससे जुड़ा सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। तब तक नमस्कार।

0: वेल अब वक्त है हमारे ये लिसनर्स को ये बताने का कि आज के बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं रश्मि जी जानन त्यागी मोदीनगर से।
0: क्या बात है, जैनन त्यागी जी बोल रहे हैं मोदी नगर से, और सबसे पहले सही जवाब देकर बन गए हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कि हनुमान जी का किरदार किसने निभाया है फिल्म रामायण में।
1: ये सनी देओल।
0: सनी देओल साहब हैं, और बहुत ही मतलब आपको पसंद है वैसे सनी देओल जी।
1: आज उनकी पिक्चर तो मैं देखता ही हूँ,
0: उनकी फिल्में देखते हैं, और अब आपको इंतजार है इस फिल्म का।
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल सही जवाब देकर सबसे पहले आप बन गए हैं बॉलीवुड सरताज, तो बहुत बहुत मुबारक आपको हमारी ओर से। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे सही सही जवाब देकर जब हम आपसे कोई भी सवाल पूछते हैं। बहुत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के

0: विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janajati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
3: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ye nate.
4: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the two states,

जी दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ते वेरी गुड आफ्टरनून दे नाल आ गई हां जी मैं दीपा छाबड़ा ते प्रोग्राम है जी लेट्स रॉक एंड डांस। कहंदे जी एक कप चाह दा बहाना कर लेना चाहिए, एक कप चाह दा बहाना कर लेना चाहिए, फासलियां नू फुर्सत नाल भर लेना चाहिए। बड़ी बोझ जी है हुण जिंदगी, सज्जणा नाल दिल हौला कर लेना चाहिए, ते सज्जणा नाल दिल हौला करन वास्ते सज्जण कोल जाना भी जरूरी है। चाह का कप तो फिर उत्थे मिलेगा ही तुहानू, है ना, ते तुहाडे दुख दर्द तुहाडे खुशियां तुसी उहदे नाल वंडोगे। ते आकाशवाणी एफ एम बठिंडा तुहाडे नाल वंडदा है खूबसूरत संगीत।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सुनना ना भुलना 25 मई दिन सोमवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

प्रोग्राम घर परिवार लेके हाजिर हाँ मैं थोड़ी रेडियो दोस्त दीपा छाबड़ा ते मेरे वालों सारिया ही भैणा नू ते उनां दे पूरे परिवार नू सत श्री अकाल नमस्कार आदाब ते वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करदी हां तुसी सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे ते काम कार तुसी निबेड़ले होने ते रेडियो दे मूरे तुसी बह गए होने। वैसे भैनों रेडियो का बड़ा सुख है भी भावें तुसी काम कार नहीं भी हले पूरा किया तां भी तुसी रेडियो सुनदे सुनदे भी अपने काम कार निबेड़ सकते हो, है ना। ते अज है जी दिन सोमवार, है ना। सोमवार नूं असी तुहाडे लई घर परिवार दे विच की लैके आने हैं ये तुहानूं पता ही है जी। सोमवार हुंदा जी सेहत संभाल का दिन ते सेहत जरूरी है जी। सेहत ठीक होएगी ताहीं तुसी घर दे काम कार कर सकोगे, सारयां दा ख्याल तुसी ताहीं रख सकोगे जे तुहाडी सेहत बिल्कुल दुरुस्त हो।

0: करो अपने जो मैं एक होर अपना दसना चाहूंगी एम्स बठिंडा विच 2 तरीक नू एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू होने वाले है ते उदे विच तुहानू है कि बीमारी होने तो पहला आपां जदों भी अक्सर हॉस्पिटल जाना है बीमारी लेकर जाने है ते तुसी मतलब कोशिश करो बीमारी होने तो पहला अपने प्रिवेंटिव केयर ते आपां एक आपां शुरू कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक सेंटर जिदा नाम है आयुष्मान आरोग्य सेंटर जिन्हों आपां कहने कि लोगों नू कहने कि निरोगी काया मतलब एक निरोग होने लई आपां एक सेंटर शुरू कीता है एम्स ओपीडी दे स्टार्टिंग तो उत्थे जाके तुसी सारी अपनी जिन्ने भी डाउट्स हैगे ने कि सानू ए ना हो जाए ओ ना हो जाए तो उत्थे जाके सारी जानकारी तुसी प्राप्त कर सकदे
1: जी। डॉक्टर मान लो किसी व्यक्ति नू कुत्ते ने कट्टिया उन्हें अपने चारे टीके लगवा ले मान लो एक महीने दे विच उहदे चारे टीके 28 दिनां ते पूरे हो गए पर अगले महीने यानी 10-15 दिनां बाद फिर कुत्ते ने कट लिया तां की दोबारा इमीडिएटली सानू जो 4 टीकियां दा प्रोसीजर है उस नू करवाना पएगा या फिर ओदे वास्ते की गाइडलाइंस ने?
0: तुसी अपना ओ 4 अपने टीके पूरे कर ले कुत्ते ने फेर कटिया तुसी सिर्फ बूस्टर डोज लगवानी ने जिस दिन कटिया उस दिन 0 दिन तुसी 3 दिन बस साल दे अंदर अंदर मैं एक महीना भी नहीं कहूंगी साल दे अंदर अंदर कुत्ते ने फेर कटिया ते सिर्फ बूस्टर डोज लगन गियां 0 ते 3
1: जी
0: यानी 0 मीन्स पहले दिन ते 3 दिन ते राही ते साल दे अंदर अंदर
1: जी। ते दूसरी गल जी डॉक्टर साहब साल तो बाद अगर कोई कुत्ता कट दिया फिर की सानू चारे टीके लेने पैणगे?
0: हां जी फिर तुहानू सारे टीके लेने पैणगे ओ कैटेगरी भी डिपेंड करदी है जिवें वाइल्ड कट्टिया है ते तुहानू तां इम्यूनोग्लोबिन भी लेना पएगा ते अपने 4 इंजेक्शन्स भी लेने पैणगे एक साल तो घट घट तुहानू सिर्फ बूस्टर डोज लेनियां ने एक साल तो बाद तुहानू अपना टीकाकरण पूरा कराना है
1: जी। हुण इत्थे डॉक्टर साहब ए भी सवाल पूछना बनदा वी कुछ लोग डॉग्स दी सेवा दे विच लगे हुए हुंदे ने कि उहनां नू कुछ खास ध्यान रखण दी जरूरत जां पशुआं दी जो सेवा करदे क्योंकि पशु कटदे नहीं पर जिहड़े कुत्ते ओह कट लैंदे जां जिहड़े इस तरह दे कुछ जानवर हुंदे ने क्योंकि स्ट्रे डॉग्स तां आम तौर ते जिहड़े गलियां दे कुत्ते जिन्हों असीं कहिंदे आ कई बार ओह डर दे कारण ही किसे नूं कट जांदे ओह कट्टण दे चांस ज्यादा हुंदे आ तां जो लोक उहनां दी सेवा कर रहे ओह किवें ध्यान रखण अपना तां कि उहनां नूं बीमारियां ने ओह जानवरां तों ना होण जी?
0: तुसीं रोटी खवाण तों बाद तुसीं बस अपने हैंड्स वॉश तुहानूं फिर भी लग रहा है कि चट्टे आ जां मैनूं डाउट लग रहा है ते एंटीसेप्टिक नाल तुसीं हैंड वॉश कर लो या अपनी हाइजीन मेंटेन कर लो होर कुछ नहीं तुहानूं डरन दी कोई लोड़ नहीं है मतलब जे आपां हैगे आ जानवर भी हैगे वातावरण भी हैगे ने सब कुछ अपने अपने नाल ही चलन गया ते सानू बस कुछ नहीं करना एदे नाल सिर्फ हाइजीन इज द इम्पोर्टेंट की
1: जी यानी जेडे उन्हां दे बर्तन ने जिदे च असीं दुध या खाना दे रहे हां कुत्तियां नू तां ओनू भी असीं साफ कर सकदे हां उस तो बाद अपने हाथ धो लिए तां सानू बीमारी नहीं होगी जी। बहुत वधिया ते बहुत विस्थार सहित डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर जी तुसीं साडे स्रोतियां दे नाल जानकारी सांझी कीती एक बार फिर तो अपने कीमती समय चो समां कढ के साडे स्रोतियां दे रूबरू होण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद मैम।
0: धन्नवाद खुशप्रीत जी
1: जी। ते स्रोतियो तुहाडी जानकारी लई दसना चाहांगे कि अज साडे नाल डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर जी जुड़े सी जो कि कंसल्टेंट ने वन हेल्थ दे एम्स हस्पताल बठिंडा विखे अपनियां सेवावां निभा रहे ने जो निवारण ओ तुसी नोट करो 0164-2867-957। तकनीकी टीम दा धन्नवाद करदे होए विशेष सहयोग लई रजिंदर जी दा धन्नवाद करदे होए ते आकाशवाणी FM बठिंडा दे डायरेक्टर जी दा धन्नवाद करदे होए तुहाडे तों अज दा प्रोग्राम समाप्त करन दी चाहांगे आग्या नमस्कार।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਨ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

0: प्रोग्राम चल रहा घर परिवार ते मैं हाँ तुहाडे नाल दीपा छाबड़ा।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
3: CAPF NCGHS मुलाजमा दे लई हुन कैशलेस मेडिकल सुविधावां मौजूद ने पर किथे
4: मालवादा प्रमाणित हॉस्पिटल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा वधेरी जानकारी लई कॉल करो 0164521200।
0: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियों मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस

0: है।
1: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत, जिथे जीवन दे गूढ़े सच, कर्म धर्म अते आत्मिक ज्ञान नाल भरपूर ए विशेष प्रस्तुति तुहानू जोड़ेगी श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल संदेश नाल।
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।

0: हल्का सा शक्कर या गुड़ डाल के उसको पीते हैं, ये होती है आपकी सोल कड़ी।
1: जी
0: उसमें हल्का सा आप खट्टेपन के लिए कोकम भी यूज कर सकते हैं। कोकम ऐसा फ्रूट है, वो खट्टा मीठा होता है, तो उसमें डाल के पिंकिश कलर का सोल कड़ी बनता है, बहुत ज्यादा टेस्टी, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं।
1: जी इस शरबत दे विच असी कुछ ठंडा भी बर्फ वगैरह भी पा सकते हैं, या इस नु असी गर्म करना है, उबालना है, किवें पीना है?
0: कुछ भी नहीं, जैसे दूध निकाल लिया, हाँ, कुछ भी नहीं डालना, ना बर्फ डालनी है ना उसको गर्म करना है, कुछ भी नहीं। उसका दूध निकाल के अगर आपको ठंडा चाहिए तो बर्फ डाल लो और पी लीजिए,
1: जी
0: बस।
1: जी सो बहुत अच्छे, ये सोल कड़ी असी कोशिश करांगे जो कि नारियल तो बनती है, ते नारियल पानी दे विच वैसे भी साडे कोल बहुत सारे मिनरल्स होंदे ने, खनिज लूण जो साडी बॉडी नूं चाहिए होंदे आ, वो नारियल दे पानी च होंदे आ। नारियल दा पानी सानू बहुत महंगा मिलदा है, बिल्कुल असी इस तरह कर सकदे हां कि नारियल पानी पीण तों बाद जिहड़ा नारियल बचदा है उस दा जो पल्प है, उस नारियल दे पल्प तों असी ये कड़ी भी बना सकदे हां। ते तुसी सानू दसो आम पन्ना ते एप्पल जूस ये किवें बनाए जाणगे?
0: आम पन्ना, आम को कद्दूकस करके फिर उसमें हरी मिर्च, हल्की सी हरी मिर्च, खट्टेपन के लिए चाट मसाला वगैरह वो ऐड कीजिए। कद्दूकस करके जैसे जूस हम निकालते हैं वैसे ही आम पन्ना बनेगा। इसमें भी बर्फ वगैरह डाल दो और बस उसको सर्व कीजिए।
1: तो बहुत अच्छी गल है। हुण असी आउने आ खाण वाली चीज़ां दे उत्ते, जिस दे विच डोसा अहम है, साउथ दे विच भी चलता है, महाराष्ट्र दे विच भी चलता है। सानू दसो कि घरे घर दे विच जेकर सवाणियां अपने परिवार नू बना के खवाना चाहुंदियां, अपने बच्चियां नू बना के खवाना चाहुंदियां, तां उह डोसा किवें बनाउणगियां? पहला डोसा, फिर डोसे दे नाल बनण वालियां दोनों तरह दी लाल ते जो वाइट चटनी है उह दसो सानू, ते नाल असी सांभर दी गल करांगे, पर पहला डोसा ते चटनियां।
0: डोसा बनाने के लिए उसकी रेसिपी ये है कि अगर हम 4 कटोरी चावल लेते हैं, अभी चावल यहाँ पे कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं, हर टाइप अलग अलग तरीके के चावल होते हैं, तो डोसे वाले स्पेशली चावल मिलते हैं, ये इडली वाला, उसको यूज करो। 4 कटोरी अगर आप चावल ले रहे हो तो 1 कटोरी आपको उड़द डाल लेनी है, इससे हाफ कटोरी आपको चने की डाल लेनी है, उससे भी हाफ आपको, अगर आपके पास दूसरी मसूर दाल वगैरह है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। 4 कटोरी चावल, 1 कटोरी आपकी उड़द की दाल, हाफ कटोरी आपकी चने की दाल, उसके बाद उसमें थोड़े से आधा चम्मच मेथी दाना, उसके बाद उसमें आप अगर डालना चाहते हो तुरंत डालनी है तो शक्कर डाल दो, या फिर इसको हमें 8 घंटे रेस्ट के बाद इसको जब हम पीसेंगे, फाइन पीसना है ना कि ज्यादा दरदरा। अगर आप इडली का बैटर कर रहे हो तो यहाँ पे ये नोट रहेगी इडली के लिए कि वो थोड़ा दरदरा पीसेंगे, वो दरदरा पीसेंगे, उसके बाद उसको 8 घंटा हम रेस्ट करेंगे, फर्मेंटेशन होने के बाद फिर इसका यूज करेंगे। ये हो गया डोसे का बैटर का, तो डोसे का बैटर हमारा 8 घंटे के बाद फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन के बाद इसको यूज करने के लिए, आपने अगर इडली का किया हुआ है तो वो दरदरा रहेगा, अगर इडली का नहीं है, इडली के लिए प्रॉपर फर्मेंटेशन जरूरी है। यहाँ पे नोट ये है कि अगर आपका फर्मेंटेशन या फिर आपका पीसा हुआ ज्यादा मोट बारीक है तो उसमें थोड़ी सी सूजी ऐड करके थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के आप उसका इंस्टेंट यूज कर सकते हो, इडली के हमारे पैन में डाल के, जो हमारा बर्तन होता है प्रॉपर इडली का, उसमें आपकी इडली बन जाएगी। देन अगर डोसे के साइड पे जाएंगे डोसा बनाने के लिए, तो नॉन स्टिक तवा चाहिए, अगर आपके पास वो भी नहीं, अगर लोहे वाला तवा है, बट उसमें कंडीशन ये है कि आपका तवा फ्लैट हो, तो अगर फ्लैट होता है तो आपको उसको घुमाना इजी होता है। अगर हमारे पास घर में तवा है तो उसको चिपकाना ना, उसको स्टिकी हो जाए, इसीलिए आप उसे, जो प्याज होता है प्याज को बारीक काट के उसके ऊपर अच्छे से तेल डाल के नमक डाल के भूने, तो आपका तवा नॉन स्टिक बन जाएगा। तो फिर बाद में आप उसको क्लीन करके कपड़े से, यहाँ पे नोट ये रहेगी कि अगर तवा आपका ऑयली ज्यादा दिख रहा है तो आपका डोसा फैलेगा नहीं, तो इसलिए तवा हमारा कपड़े से क्लीन होना चाहिए, फिर बाद में उसके ऊपर हमें डोसा फैलाएंगे। इसमें भी एक ये है कि अगर आप टेम्परेचर आपका तवे का ज्यादा है तो वो फैलेगा नहीं, मीडियम टेम्परेचर मीडियम फ्लेम पे हमारा डोसा क्रिस्पी होगा,
1: जी
0: ब्राउनिश कलर होगा, फिर आपका डोसा रेडी है। नेक्स्ट अगर चटनियों की बात की जाए तो नारियल की चटनी और दूसरी एक चटनी आती है टमाटर की चटनी, इसमें भी नारियल होता है टमाटर की चटनी में, बट वो डिपेंड करता है आपको किस तरह का चाहिए। अभी महाराष्ट्र में नारियल मोस्टली और साउथ में मोस्टली नारियल है ही है, तो हर चीज में हम नारियल खाते हैं, तो अगर नारियल की चटनी बनानी है तो आपको एक एक नारियल है आपका तो उसमें 1 मुट्ठी या फिर आधी कटोरी मूंगफली डालनी है, 2-4 हरी मिर्च डालनी है।

0: धनिया डालना है, ये अच्छे से बारीक ग्राइंड करके, यहाँ पे गीला नारियल रहेगा, अगर गीला नारियल नहीं है, सूखा नारियल है तो सूखे नारियल को पानी में अच्छे से भिगो के 2 घंटे 1 घंटा, फिर बाद में उसको पीस के फिर आपकी चटनी रेडी है। अब ये पीसने के बाद हल्का सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार वो डाल दे, और यहाँ पे स्पेशल जो तड़का लगेगा, जो भी फ्लेवर आता है चटनियों का, वो तड़के के ऊपर रहता है। तो जब आप तड़का लगाओगे तो उसमें सरसों के दाने जरूर डालने, काली सरसों, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी धनिया, हरी धनिया, बस तड़का लगा के उसके ऊपर छोड़ देना। हमारी सफेद चटनी नारियल वाली रेडी है। देन उसके बाद बात करेंगे लाल चटनी। यहाँ पे आपको जो अदरक और लहसुन खाते हैं उनको अच्छा लगता है, तो अदरक लहसुन अच्छे से पीस के, सेम जो आपकी ये नारियल की चटनी, वो हल्की सी आधी कटोरी डाल के, यहाँ पे 3 से 4 टमाटर उसमें ऐड करके, हल्की सी इमली ऐड करके पिसवा के लेना है। फिर इसे सेम तड़का लगा के आपकी लाल चटनी भी रेडी है।
1: जी, ये चटनियां साड़ियां तैयार हो गई हैं, पर डोसा जड़ा है तुसी प्लेन डोसा बना देता है। डोसे दे विच जड़ा मटेरियल भरना है जिसनों मसाला डोसा कहते हैं, वो मटेरियल किस चीज़ का बनता है, वो विच की कुछ पा सकते हैं, जिमें आलू दे नाल होर की कुछ पएगा, ते तैयार किमें होना?
0: अभी यहाँ पे हमने प्लेन डोसा तो बना लिया, या अगर आपको मसाला डोसा बनाना है तो यहाँ पे आपकी आलू की सब्जी सेपरेट सी बनेगी। जैसे आलू की सब्जी, आलू पका के प्याज का तड़का वगैरह लगा के अच्छे से पीला आलू बनाएंगे, फिर उसी आलू के मसाले को हम डोसे के ऊपर फैलाएंगे, लगाएंगे और उसको फोल्ड करके सर्व करेंगे। रेडी है आपका मसाला डोसा। फिर आपको उसमें पनीर डाल दो, पनीर मसाला डोसा हो गया, चीज़ डाल दो, चीज़ मसाला डोसा हो गया, वो डिपेंड करेगा। अगर मैसूर मसाला डालना है तो यही पे आपकी जो टमाटर की चटनी है उसी चटनी को डोसे के ऊपर चारों तरफ से अच्छे से लगाओ और मसाला लगाओ, आपका मैसूर मसाला डोसा भी हो गया।
1: बहुत अच्छी।
0: उसके साथ साथ एक गन पाउडर आपको आती है जो साउथ इंडियन टेस्ट आपको देगी, तो वो आपको ऑनलाइन जोमेटो स्विगी सॉरी अमेजोन वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर करवा दो, उसके टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एक मसाले की कमी से।
1: जी बिल्कुल, साडा डोसा तैयार हो गया, चटनियां तैयार हो गई हैं, पर सांबर तो बिना डोसा खाण दा स्वाद नहीं आएगा। हुण सांबर किवें बनाउणी है, क्योंकि यह अपने आप दे विच हेल्दी करी है, ये हेल्दी सेहतमंद तरी है अपने आप दे विच, जिदे विच बहुत सारियां सब्जियां पै जांदियां हैं। खास तौर ते उहदे विच असी ड्रमस्टिक, जिन्हां नूं असी सुहांजणे दियां फलियां कहने आ, वह भी उहदे विच आपां वरत लैंदे आ, होर कई तरह दियां बीनस उहदे विच पा दिंदे आ, सारियां सब्जियां कई बार उहदे विच घरे पा दित्तियां जांदियां सुहाणियां वल्लों। तां तुसी सानूं दस्सो कि इह असी सांभर तैयार किवें करना?
0: अभी सांबर की बारी। सांबर बेसिकली दाल से बनता है, एक वो दाल ही।
1: जी
0: अभी सांबर क्यों बोला गया, क्योंकि महाराष्ट्र के जो राजा थे वो संभाजी राजे, एक राजा के पास वो विजिट के लिए गए थे, तो उन्होंने उनके लिए वो सांबर बनाया था, यानी दाल बनाई थी, तो उनको खट्टा पसंद था, उन्होंने उसमें इमली डाल के वो दाल उनको सर्व कर दी, तो वो संभाजी राजे को वो दाल बहुत अच्छी लगी, तब से उस दाल को सांभर बोलने लगी, इसलिए उसको सांभर बोलते हैं।
1: सो ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਭਾਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ।
0: ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਹਰਰ ਕੀ ਦਾਲ ਲੇਂਗੇ। हरर की दाल आपको अच्छे से हल्दी, नमक और हल्का सा लाल मिर्च डाल के पका के लेनी है, फिर बाद में उसको अच्छे से पीस के चम्मच से घोट के लेनी है ताकि उसमें दाना ना रहे, ठीक है। अब इसके बाद तड़के की तैयारी करेंगे, तो तड़के के लिए आपको जितनी भी सब्जियां आपके पास है अवेलेबल हैं, इसमें स्पेशली आपको इमली और ड्रम स्टिक और पेठा, ये 2-3 चीज़ें आपको पहले मेन चाहिए, क्योंकि ड्रम स्टिक का एक अपना टेस्ट होता है और पेठे का एक अपना मिठास होती है।
1: जी ड्रम स्टिक की जो गल कर रहे ने भाग्यश्री, तो स्रोतियो यह जो फलियां की गल हो रही है, सुहांजने दियां फलियां की गल हो रही है, जिन्हां च कैल्शियम भरपूर मात्रा दे विच हुंदा है।
0: हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद अभी बाकी के जो सब्जियां हैं हमारी, वो हमारी मर्जी है कि हमें कौन सी सब्जी इसमें ऐड करनी है। जैसे आप बैंगन भी डाल सकते हो, उसके बाद बीन्स वगैरह है वो डाल दो, ये सारी सब्जियां हम कटिंग करके चॉप करके, फिर इसमें हम इसको सीटी नहीं लगाएंगे, जब हम तड़का लगाएंगे दाल के साथ उसको पकाएंगे, तो जो भी सब्जियों का अर्क है उसमें उतरेगा। जैसे आपने बोला कि ड्रमस्टिक में कैल्शियम्स होता है, इन सब्जियों का उसमें अर्क उतरेगा, तभी उसका बेनिफिट

0: होगा कि कई बार क्या होता है कि कुकर में हम सीटियां लगाते हैं तो कुकर में उनकी जान निकल जाती है, ऐसे कहा जाता है, तो ये नहीं करना। तो यहाँ पे इमली जरूर ऐड करनी है और हल्का सा गुड़ ऐड करोगे तभी आपको साउथ का टेस्ट मिलेगा। उतना ही खट्टा, उतना ही मीठा, उतना ही तीखा। सांभर की खासियत ये है कि सारे रसों का स्वाद उसमें मिलेगा, जो टेस्ट का।
1: जी,
0: यहाँ पे फिर हमारा सांभर रेडी हो गया।
1: असी डोसा जड़ा है वो बना लिया है। हुण असी होर जो पकवान ने उधरले पासे दक्षिण भारत दे विच जां महाराष्ट्र च खाए जांदे आ, स्नैक्स दे तौर ते पोहा खादा जांदा है, उपमा खादा जांदा है। हुण असी हौली हौली आउने आ, पहला पोहा ते फिर उपमा।
0: पोहा, अभी महाराष्ट्र में अलग तरीके से पोहा बनता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पोहा बनता है, हल्का डाइजेस्ट के लिए हल्का होता है और देखने में भी आपको बिल्कुल हल्का लगेगा। अभी यहाँ पे पंजाब में ये है कि सब्जियां वगैरह डाल के बनता है, तो महाराष्ट्र में पोहा हल्के तरीके से बनता है, उसमें कुछ नहीं, मूंगफली जरूर आएगी और प्याज आएगा। बट पोहे की ट्रिक ये है कि पोहा जब भी आप भिगोओगे तो उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दो। पोहा भी वैरायटीज आते हैं, इसीलिए दोबारा पोहा फिर से धो के फिर बाद में तड़का लगाओगे, जैसे सरसों डाल दिया, जीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और मूंगफली डाल दी। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करना है, यानी फ्राई करनी है, वो क्रिस्पी हो ना कि वो सॉफ्ट रहे। बाद में फिर प्याज ऐड करके फिर तड़का लगाने के बाद हमारा पोहा ऐड होगा। अभी यहाँ पे तुरंत ही आपको हल्दी वगैरह डाल के, पोहा डाल के तुरंत ही ढक्कन रख के हिला के एक बार तुरंत ढक्कन लगा के गैस ऑफ करनी है। अगर आप जैसे कोई भी सब्जी हो या फिर कुछ चीज हम भूनते हैं तो उसको भूनते रहेंगे तो वो पोहा हार्ड होगा, खाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, यानी हार्ड लगेगा, वो चबाते रहना पड़ता है। पोहा ऐसा होना चाहिए कि मुंह में डालते ही उसका पानी हो जाए, है ना, डाइजेस्ट होने के लिए चाहिए। तुरंत तड़का लगाने के बाद ढक्कन रख के गैस का फ्लेम बंद करके फिर 2 मिनट के बाद उसको हिलाओ, हल्की सी ऊपर से शक्कर 2-4 दाने और नींबू निचोड़ के रख दे तो उसका स्वाद और अच्छा लगेगा। बस धनिया डाल दो, हल्का सा नारियल का बुरादा ऊपर से डाल के सर्व कर लीजिए।
1: सो बहुत अच्छी गल तुसी दसी कि जदों असी भ्योंता होया, कुछ समय भ्यों के रखा होया पोहा जदों विच पाता, तां उस तों बाद फ्लेम असी चालू नहीं रखनी है, असी फ्लेम बंद कर देनी है, नहीं तां साडा पोहा चीड़ा हो जाएगा। ते बहुत अच्छी गल तुसी दसी। हुण उपमा वल आउने आ, क्योंकि उपमा जिहड़ी है सूजी नाल बनने वाली एक डिश है, ते सूजी साडे लई बच्चियां लई बहुत फायदेमंद है, डाइजेस्ट जिहड़ी है छेती हुंदी है, सेहतमंद है, इह मैदे नालों किते वधिया है सूजी। सो सानूं इह दस्सो उपमा किवें बनदा है ते की है।
0: उपमा बेसिकली सूजी से बनेगा, तो उपमा क्या है, एक नमकीन हलवा है, जैसे हम सूजी का हलवा खाते हैं, बस ये नमकीन हलवा। अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप इसमें अलग अलग तरीके की सब्जियां बारीक बारीक चॉप करके तड़के में डाल दो, अच्छे से सब्जियां पका के भुना हुआ भुनी हुई सूजी उसमें ऐड करके फिर उसको सर्व करो, यानी तड़का लगा के अच्छे से पका के पानी डाल के, जैसे कि अभी हम सब्जियां काट ली सब, उसमें पानी डाल दिया, तड़का लगा के पानी डाल दिया, सब्जियां पकने तक उसमें पानी रहेगा, भुनी हुई सूजी उसमें ऐड होगी, वह इसको अच्छे से हिलाना है। यहाँ पर भी आपको 2 मिनट फ्लेम बंद करके ढक्कन रख के कि उसमें क्या होगा कि सूजी आपकी अच्छी सी पकेगी और फूलेगी। हम क्या करते हैं कि तुरंत बस हिला दिया, पक गया, ढक्कन रख दिया, नहीं रख दिया, बस प्लेटिंग कर दी, हो गया, नहीं। तो यहाँ पे सूजी हमारी कच्ची रहती है, तो सूजी कच्ची ना रहने के लिए तड़का जब भी लगेगा सूजी डालेगी, पानी डाल के हल्का सा ढक्कन रख के 2-4 मिनट रेस्ट करवाओ, फिर बाद में उसको सर्व करो, तब आपका उपमा है एकदम खुला खुला और अच्छा रहेगा।
1: पानी किन्ना पाउणा है, अंदाजा किवें लिया जावे भाग्यश्री, क्योंकि कई बार ये हुंदा है कि पानी जे वध पै जे तां उहो इक गाढ़ा लेप बन जाएगा उहो, क्योंकि फिर उहो उपमे दी शकल दे विच खिलरा होया नहीं मिलेगा सानू, तां पानी किन्ना क पाउणा है ते किवें पाउणा है, गर्म पाउणा है कि ठंडा पाउणा है, इह वी दस्सो।
0: इसीलिए मैंने बताया आपको कि जो सब्जियों को तड़का लगेगा उसमें जो पानी रहेगा वो पानी उबला हुआ है,
1: जी,
0: सूजी आपकी भुनी हुई है। अभी यहाँ पे क्या है कि सब्जियों का पानी, सब्जियों को पकने के लिए पानी लगेगा। अगर आपकी 1 कटोरी सूजी है तो 2 कटोरी पानी आपने डाल दिया तो आधी से पौना कटोरी आपका पानी सब्जियां पी लेती है, बाद में जो बचा हुआ है पानी कम पड़ेगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसमें सूजी जब डालेंगे तो ढक्कन बंद करेंगे, तो ढक्कन बंद करने के बाद सूजी फूलेगी, किसमें, स्टीम में, फिर बिल्कुल आपका जो उपमा है वो खिल रहा हुआ और खुला खुला मिलेगा, ना कि जैसे कोई पेस्ट मिलेगी।
1: बहुत अच्छी गल है, तुसी सानू सांभर दी दासी दित्ती है। वड़ा पाओ दी असी गल करना चाहांगे, क्योंकि महाराष्ट्र दे विच बड़े स्वाद नाल खादा जांदा है वड़ा पाओ। एक पाओ दे विच यानी कि ब्रेड

0: आके फ्राई होने की जगह पे, यानी शैलो फ्राई होगा। बस खिचड़ी आपकी फिर रेडी है और साबूदाना वड़ा भी रेडी है। अब यहाँ पे जब आप खिचड़ी बनाओगे तो यहाँ हरी मिर्च, महाराष्ट्र में मूंगफली हर जगह पे खाई जाती है, यानी हर टाइम मूंगफली चाहिए ही चाहिए। अभी यहाँ पे पंजाब में मूंगफली ठंड के टाइम खाते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में गर्मी ज्यादा होती है, मूंगफली गर्म होती है, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। अभी महाराष्ट्र का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, यानी ऑल टाइम आप कोई भी चीज खाओ आपको कोई मना नहीं है। तो खिचड़ी बनाते टाइम आपको, अभी यहाँ पे जीरा खाते हैं, यानी फास्ट में कई लोग जीरा खाते हैं, कोई नहीं खाते है, कोई कड़ी पत्ता खाते, कोई नहीं खाते, कोई धनिया खाता है, कोई नहीं खाता। जिस तरीके का आपका क्या बोलेंगे कल्चर है, ट्रेडिशन है, उस तरीके से आप साबुदाने का तड़का लगा लो, उसमें आप आलू डालो, मूंगफली जो भुनी हुई है उसका कद्दूकस करके उसमें ऐड कर दो, अच्छे से शैलो फ्राई करो। इसमें भी आपको ढक्कन जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टीम काम करेगा। आपकी खिचड़ी जो भीगी हुई है, आप अगर उसको अच्छे ज्यादा टाइम शैलो फ्राई करते रहोगे और आपका बर्नर यानी गैस भी शुरू है, तो यहाँ पे आपका साबुदाना फिर से हार्ड होगा। तो ये नहीं होने देना, यानी 2 मिनट तड़का लगा दिया, अच्छे से घुमा दिया, बस ढक्कन बंद करो और रेडी हो जाएगी आपकी साबुदाने की खिचड़ी। अभी यहाँ दूसरा अगर हम बात करेंगे साबुदाना वड़ा के लिए, तो यहाँ पे क्या करना है, कढ़ाई पे आपको तेल रखना है, जो साबुदाना आपका अच्छे से फूला हुआ है। अभी ये भी हो सकता है कभी कभी, हमारे पास आज मेरा फास्ट था और मेरे पास बची हुई खिचड़ी है, तो उस खिचड़ी का क्या करूं, वही हर बार नहीं खाया जाता, तो उसी खिचड़ी को और थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में आलू डाल के उसको अच्छे से स्मैश करके उसके गोले बनाओ और उसको डीप फ्राई करो,
1: जी
0: आपका बन गया साबुदाना वड़ा।
1: जी
0: बस फर्क रहेगा आपका आलू का, यहाँ पे साबुदाना वड़ा में आपका आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, वो भी स्मैश किए हुए, खिचड़ी में आपका आलू स्मैश किया हुआ नहीं रहेगा।
1: मतलब जदों असी साबुदाना वड़ा बनाना है तां असी बेसन दा इस्तेमाल नहीं करना, असी सिर्फ आलू ते साबुदाना दी जो असी प्यूरी बनाई है उसनू रगड़ के जो असी एक बैटर बनाया है उस बैटर दे ही गोले जां टिक्कियां बना के उसनू तल लेना है।
2: श्रोतियों, भाग्यश्री वालों लगाए जा रहे मराठी तड़के दा जायका असी जारी रखांगे। होर बहुत तरह दीआं डिशेज ते बहुत तरह दे पकौड़े बाकी ने, वह असी भाग्यश्री तो सुणांगे अगले सोमवार नू सिलसिला जायका दे तहत। फिलहाल अज का यह सिलसिला जायका इत्थे ही खत्म करने की मैनू मनदीप रजौरा नू देओ आ गया। नमस्कार।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत, जिथे जीवन दे गूढ़े सच, करम धर्म अते आत्मिक ज्ञान नाल भरपूर ए विशेष प्रस्तुति तुहानू जोड़ेगी श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल संदेश नाल।

0: including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the U.S.-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा, कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है।

0: इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता।

0: यात्रा। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं।

0: वाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता आकाशवाणी FM बठिंडा। इस वेले दोपहर दे 2:30 ते 30 सकिंट दा समा हो रहा है ते हुण वेला है जी प्रोग्राम सुरीली दोपहर दा।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा सुनना ना भुलना 25 मई दिन सोमवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते।
1: ते जी आकाशवाणी FM बठिंडा ते इस वेले प्रोग्राम चल रहा है सुरीली दोपहर ते सुरीली दोपहर दे विच ट्रिंग ट्रिंग घंटी वजी ते एक स्रोता साडे नाल जुड़े ते देख लैने आ जी कौन ने। हैलो

0: हेलो, हाँ जी मैडम जी, सत श्री अकाल। तुहाडी आवाज,
1: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। कौन बोल रहे हो? हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ, अज साढ़े ना इतने थोड़ा मैं दिक्कत लग रही है। तुहाडी आवाज कदे कदे मेरे तक पहुंचती है, तो तुसी अपनी पसंद दस दियो मैनू।
1: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी, नमस्कार। हेलो, हाँ जी परमजीत
1: हेलो।
0: जी, हाँ जी परमजीत जी, सत श्री अकाल। तुहाडे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही?
1: हेलो।
0: जी दोस्तों, कोई तकनीकी खराबी करके उन्हां कोल साडी आवाज़ नहीं पहुंच रही, जदों की उन्हां दी हैलो हैलो मैनू थोड़ी बहुत तां सुन रही है। मैं फिर भी ट्राई कर दिया उन्हां तों दोबारा राबता कायम करन लई।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
0: ਹੈਲੋ।
3: ਹੈਲੋ।
0: ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਲਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਸ ਮੇਰਿਆ ਦਿਲਬਰਾ ਵੇ। ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ।

0: दस मेरिया दिलबरा वे तू किड़े अर्श दा तारा जी। बहुत ही खूबसूरत गीत परमजीत जी दी फरमाइश ते मैं सुना दिता है, पर माफ करना परमजीत जी, तुहाडे नाल गल साडी नहीं हो पाई। ऑफ एयर तो हो गई, तुसी बहुत तारीफा शरीफा कीतियां जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी। तो इदां ही आकाशवाणी एफ एम बठिंडा नूं तुसी प्यार करदे रहो। प्रोग्राम सुरीली दोपहर दे विच इक होर श्रोता जुड़े ने, कोशिश करदे आ उहनां नाल गल करन दी। हैलो
1: हैलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: कौन बोल
0: रहे हो? हेलो
1: हेलो मैडम जी,
0: हाँ जी तो मेरी आवाज आ रही है?
1: नहीं थोड़ी आवाज रेडियो रहा सुन रहा जी।
0: रेडियो राही सुन रहे हो ते तुसी चलो अपनी फरमाइश दस दो मेनू।
1: कल जारी जट दी दा चित्रा दो जी, जग वाला बिल
0: जी जी जी। तुसी दस्या यारी जट दी फिल्म चो तेरे बाजों दिल नहीं लगदा।
1: हाँ जी हाँ
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच शामिल होने लई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी। थोड़ी जी तकनीकी खराबी तो चल रही है, पर शुक्र है स्रोतियां नाल साडी गलबात हो पा रही है ते उन्हां दी पसंद ते ए गीत मैं तुहानूं सुनवाण जा रही हां। फिल्म यारी जट दी दा गीत तेरे बाजों दिल नहीं लगदा।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत, जिथे जीवन दे गूढ़े सच, कर्म धर्म अते आत्मिक ज्ञान नाल भरपूर ए विशेष प्रस्तुति तुहानू जोड़ेगी श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल संदेश नाल।
1: प्रोग्राम सुरीली दोपहर समा 2:52 का, तुहानू एक होर जानकारी दे दवां। कल हड बीतियां जग बीतियां दे तहत सवेरे 7 बजे तुसी कहानी सुनोगे बाल बसंत, जिहड़ी कि पेश करनगे खुशप्रीत शेरगिल। ते इस वेले प्रोग्राम चल रहा है सुरीली दोपहर, ते एक श्रोता साडे कोल पहुंचे ने, अपनी फरमाइश लैके देख लैने जी कौन ने। हैलो,
2: हैलो,
1: हां जी सर नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
2: हेलो
1: हेलो, मेनू आ रही है जी तुहाडी आवाज।
2: हेलो

आकाशवाणी एफएम बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से समा इस वेले 2:59 ते 45 सेकंड दा हो रहा है। ठीक 3 बजे तो लैके 5 बजे तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। ते आओ चलदे हां विविध भारती मुंबई।

0: की सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ। ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है
1: जी।
2: और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल,
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं
2: जी। हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना

0: तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकलें। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने
1: व्यंजन,
0: वाले हैं। जी
1: बिल्कुल। आज हम बिहार की व्यंजन की बात करेंगे,
0: जी
1: जो है खाजा और रसिया।
0: जी तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया
1: हाँ।
0: हमने नहीं खाया है। तो
1: रसिया हम सुनते भी हैं, जो
0: जी
1: एक जो
0: बिल्कुल
1: गीत भी होते हैं,
0: जी,
1: लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
0: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो
1: बिल्कुल
0: शायद खाने वाला भी बड़ा
1: बिल्कुल
0: मीठा
1: मीठा
0: होता
1: ही
0: होगा।
1: होता है ये।
0: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
1: जी
0: तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और साथ ही हमारे जो श्रोता है उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो
0: अच्छा
1: लाए हैं वो
0: जी,
1: है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
0: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा।

0: सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू, ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी? हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
3: हाँ, ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
3: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
2: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।

0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
1: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की मां। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
2: तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
2: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना। अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
1: हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण।
3: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
1: रामू की मां, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
0: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
1: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है। हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की मां, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा।
1: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप रे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं?
1: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
3: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
0: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा,

0: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की मां, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
1: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
1: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
4: अरे अम्मा जी।
1: हाँ।
4: ये तो
1: क्या हुआ, बोलो तो।
2: अरे हुआ का, बताओ
4: क्या बताएं अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या, बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गए।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती, स्वागत है फिर से सखी सहेली में। और
1: हाँ
0: पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया,
1: अब
0: देखो
1: तो मान
0: रूठा ना
1: ही
0: करो,
1: गए
0: अब तक मान गए होंगे।
1: जी हाँ,
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर
1: क्या
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं।
0: जी
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो
1: जी
0: मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता, शरीर के बाकी अंगों का प्रयोग कर
1: बिल्कुल।
0: रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तिथि को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो
1: बिल्कुल
0: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है, क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है, क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने
0: इतनी
1: में
0: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात।
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार
1: कहते
0: करो
1: ना,
0: और
1: जिस
0: हार
1: पे
0: जाओ।
1: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
0: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।

0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है, ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है ये।
0: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी,
1: बढ़ेगी,
0: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जब हम बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
1: जी।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है, टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी ना किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर
1: बिल्कुल
0: रहे
1: सही
0: होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये
0: जी
1: खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत बहुत
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यहाँ कहीं घूमने जाना, जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वो चीज वही चीज खा रहे होते तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
0: लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या
0: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम,
0: सबसे पहला काम, अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतः जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन दो महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो दो महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे चार लोग जा रहे हैं तो चार पेज बन जाते हैं। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि दो दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं। तो पहले से ही ये लिख लेना

0: एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम
1: हाँ
0: सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए।
0: जी
1: और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का,
0: जी
1: जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, डकौर, मतलब जिन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें 2 चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है।

0: तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में, बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा

0: खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
1: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
0: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
1: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
0: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
1: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं, तो आप मोयन डालते हैं। और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
0: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
1: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा ना,
0: बहुत अच्छा लगेगा,
1: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग।
0: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं हर स्थान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
1: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है कि जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: विधि,
2: विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूं, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूं, हंस रही हूं चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए,
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक। सखी सही।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम

0: इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है
1: जी।
0: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
1: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है ऐसे? चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
0: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
1: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट।
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहां पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है। तो उसमें आप, हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास, वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते होंगे।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
0: जी
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
1: हाँ
0: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है? तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना
1: हाँ
0: है।

डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है और

0: फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए?
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी में।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: और ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
1: पॉजिटिव
0: जैसा कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
1: हाँ, रेंज के बाहर, हाँ,
0: रेंज के बाहर, हाँ, तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: जी, जी जी।
1: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि, हाँ, ये लेवल क्या है,
1: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
0: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
0: काला बाजार,
1: काला बाजार,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।
2: खोया खोया चांद

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे उस

0: में से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा. तो ये होता है जड़. तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
1: जी,
0: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है. इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है. तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले, या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है. हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
1: जी.
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षण दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका जो क्योर है वो जल्द हो जाएगा.
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है. लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें. और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये.
0: हाँ.
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: है. प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा.

वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है।

0: डॉक्टर लिजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है?
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे
0: तो हो जाती
1: घातक
0: है।
1: होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को, मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं,
0: जी
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
0: जी जी
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान
0: गुस्से
1: लाल
0: से।
1: होती है
0: हाँ
1: गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है, ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है,
0: जी जी
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान,
0: जी
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक,
0: फोबिया।
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल।
0: जी
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल।
1: फिजिकल, उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो अलाना
0: वो सारी
1: फलाना,
0: विषैली चीजें,
1: हाँ
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
1: हाँ तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया।

0: एक्ने हो गया, सिंपल पिंपल हो गया।
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं,
1: जी
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री,
1: जी
0: ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: परिवार का। अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटी कैरेक्टर।
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है,
1: जी
0: उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे में, आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा
0: बैजू बावरा।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग, मतलब
0: पसीना।
1: पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर।
1: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी
0: एक
1: है,
0: इंडिकेशन होता है
1: एक
0: उसमें।
1: इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूं एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी
1: आयोडीन का
0: मेहनत करने पे ही वो थक जाता है।
1: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट
0: जी
1: इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस। मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके, और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल।
0: जी
1: आयोडीन का पेशेंट, उसी अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा,
0: मायूस।
1: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज पे, थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया, तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन, या स्वयं को दवाई देना, प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: है, क्योंकि जैसे ही आप, थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
1: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है,
0: जी
1: ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
0: जी
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से, पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।

0: जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
1: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का, मतलब आहार का, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा। साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो तो अमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो। सीजनल फ्रूट,
0: कोई भी मौसमी एक जो फल
1: मौसमी
0: है वो खाना
1: खाना,
0: चाहिए।
1: खाना हो या फल हो, ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा आप पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
0: बहुत प्रेशर
1: नहीं।
0: पड़ेगा।
1: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, टी थ्री किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
0: ओहो,
1: यस,
0: क्या बात।
1: इसीलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा
0: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है
1: जरूर।
0: रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
1: उतना ही है।
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो
1: बड़ी
0: चाइनीज फूड में
1: खतरनाक
0: ज्यादा
1: है।
0: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला आपने।
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
1: हाँ कम
0: इतना तो
1: कर
0: करें
1: दीजिए, मैं ये
0: जी।
1: भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल।
1: कंट्रोल करना शुरू हो जाए। सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना। जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है।
0: जी
1: मन
0: जी
1: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
1: एक
0: चलते
1: अच्छा सा
0: चलते।
1: गाना, चलते चलते मैं हूं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता आकाशवाणी FM बठिंडा। इस वेले स्टूडियो दी घड़ी ते शाम दे 5:28 हो रहे ने ते हुण वेला है जी प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दा।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

साथ मिलिया सी उसनू, सुरां दा जो साथ मिलिया सी उसनू, ओ किसे किस्मत वाले नू ही दोस्तों मिलदा है। जिस दी हेक विच रब वसदा होवे ओ गायक नहीं एक दास्तान बन जांदा है। दोस्तो जदों ओ गाउंदा सी वेला रुक जांदा सी, हर एक लफज दिल विच उतर जांदा सी। दोस्तो उस दे गीत गीत नहीं हुंदे सन, ओ जिंदगी दे एहसास बन जांदे सन। दोस्तो बिंदरखिया जी दे बहुत सारे गीत लाइव रिकॉर्डिंग दी फील देन लई बनाए जांदे सन, ता जो सुनन वाले नू लगे कि ओ स्टेज उत्ते ही है। बिंदरखिया जी दे शोज विच दर्शकां दी एनर्जी इन्नी हुंदी सी कि कई वारी ओ खुद भी गीत दौरान हस पैंदा सी। दोस्तो कुछ लोग सिर्फ नाम बनाउंदे ने, पर कुछ लोग इतिहास लिख जांदे ने। जो दिलां विच वस जान ओ कदे मिटदे नहीं, सिर्फ कहानियां बन जांदे ने। जिसने हासे दित्ते जिसने रोना भी सिखाया, जिसने हासे दित्ते जिसने रोना भी सिखाया, दोस्तो ओही असल फनकार कहाया।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: CAPF NCGHS मुलाजमा दे लई हुन कैशलेस मेडिकल सुविधावां मौजूद ने पर किथे
3: मालवादा प्रमाणित हॉस्पिटल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा बधेरी जानकारी लई कॉल करो 0164521200।
4: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत तुसी सुनोगे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप दी अगली कड़ी।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत, जिथे जीवन दे गूढ़े सच, करम धर्म अते आत्मिक ज्ञान नाल भरपूर ए विशेष प्रस्तुति तुहानू जोड़ेगी श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल संदेश नाल।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी। 9 दशक यानी के 90 साल जदों टीवी दा पर्दा अजे कोरा सी ते इंटरनेट एक सुफना, उदों धुन दी इस लहर ने भारत दे हर घर विच अपनी जगह बनाई। क्रिकेट दे अखी डिठे रोमांचक हाल तो लैके मन की बात दे संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी महज एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि हर भारतीय दे संघर्ष अते सफलता दा गवाह है। सूचना, सिख्या अते मनोरंजन दा भरोसे योग साथी अज भी पहाड़ां दियां टीसियां तो लैके दूर दुराडे पिंडां तक साडी आवाज ही तुहाडी पछाण है।

0: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उसदे घर वाले कुड़कुड़ दास बुलांदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही ओ सारेयां ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू ए पखा क्यों चलदा छड़ता, बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तों उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तों मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अज ही रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in ते।

0: नवी कार जीतन दो मौका। वाह, मैं पापा नो सरप्राइज देंगी। बस थोड़ी जी डिटेल पढ़नी है।
1: रुक जा मूर्ख।
2: की अजय पॉपअप्स तो सावधान रहो। स्कैमर्स निजी वेरवी आंधी दुर्वर्तो कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना? ठंड रख।
0: कर कार जीत जान देता। पापा होमवर्क नहीं करांदे।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो।
0: तू बोल रहो।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पंजाब राज चोण कमिश्नर ने कल स्थानक आम चोणां नूं शांतिपूर्ण ते सुचारू ढंग नाल करवाउण लई सारे प्रबंध मुकम्मल किए। सरकार वल्लों कल नूं छुट्टी दा ऐलान। पंजाब दे मुख चोण अफसर अनंता मित्रा ने कहा सूबे वल्लों विशेष तीबर सोध शुरू होण तों पहलां 90% तक प्री मैपिंग करन दा टीचा मिथ्या गया। सूबे दे वोटरां नूं BLOs नाल वध तों वध सहयोग करन दी अपील। अत दी गर्मी दे मद्देनज़र अज तों पंजाब दे सारे सरकारी दफ्तरां स्कूलां ते कॉलेजां दा सफना बदल के सवेरे 7:30 बजे तों दोपहर 1:30 बजे तक होया। अते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनां दौरान पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च लू चलण दी पेशीनगोई कीती। ते हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे 66 खास शख्सियतां नूं साल 2026 लई पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इन्हां विचों 2 व्यक्तियां नूं पद्म विभूषण, 6 नूं पद्म भूषण ते 58 नूं पद्म श्री नाल नवासिया गया। उगे फिल्म अदाकार धर्मिंदर सिंह दियोल नूं कला च उन्हां दे योगदान लई मरण उपरंत पद्म विभूषण नाल सन्मानित किया गया। अदाकार की पत्नी अते लोक सभा मैंबर हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार हासिल किया। पद्म श्री नाल सन्मानित कीतियां गईयां उगियां हस्तियां विच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल ने। इस समारोह दौरान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत अते HT कुमार स्वामी समेत होर कई पतवंते भी मौजूद रहे। ए वकारी नागरिक सम्मान, कला, लोकहित ते समाज सेवा, साहित ते सिक्ख्या, विज्ञान ते इंजीनियरिंग, व्यापार ते सनत, दवा ते खेडां दे खेत्रां च शानदार प्राप्तियां लई दित्ते जांदे ने। पंजाब राज चोण कमिशन ने कल नगर निगमां, नगर कौंसलां अते नगर पंचायतां दीआं हो रहीआं आम चोणां नूं शांतिपूर्ण अते सुजारू ढंग नाल करवाउण लई सारे प्रबंध मुकम्मल कीते ने। वोटां कल सवेरे 8 बजे तों शाम 5 बजे तक पैणगीआं ते वोटां दी गिणती 29 मई नूं होवेगी। चोण कमिशन वल्लों जारी हुक्मां मुताबक वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथां दे नेड़े किसी भी तरहां दा शोर शराबा जां हंगामा करन ते पाबंदी रहेगी। कमिशन ने लोकां नूं शांतिपूर्वक ते बिना डर ते वोट पाउण दी अपील कीती है। इस दौरान पंजाब पुलिस भी नगर निगम चोणां नूं अमन निरपक्ष ते पारदर्शी तरीके नाल नेपरे चढ़ाउण लई पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा प्रबंधां नूं पुख्त करन ते आम जनता विच सुरक्षा दी भावना पैदा करन लई चोणां वालियां थावां ते सुरक्षा दे सख्त इंतजाम कीते गए ने। पुलिस ने चोणां दौरान माहौल खराब करन दी कोशिश करन वाले शरारती अंसरां नूं सख्त चेतावनी दिंदिआं कहा है कि जेकर किसी ने भी इस दौरान कोई गड़बड़ करन दी कोशिश कीती तां उस दे खिलाफ कानून तहत सख्त कार्रवाई कीती जाएगी। चोणां विच गैर कानूनी तरीके नाल शराब की सप्लाई करन, किसी भी तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियार लैके घूमन, जानां दा प्रदर्शन करन, गुंडागर्दी जां किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े का माहौल खराब करन की सख्त मनाही हो। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
4: ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ।
3: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 7,555 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1,801 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1,550, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1,316 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1,251, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 96 ਉਮੀਦਵਾਰ, 1,528 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ 13 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @

जी नौजवान साथियों अज दे प्रोग्राम युववाणी दे तहत तुसी सुन रहे सी एक विशेष भेंट वार्ता जिस दे विच चर्चा दा विशा रहा पंजाब दे अंदर असला सभ्याचार जिस ते गलबात कर रहे सन रीजनल सेंटर पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस बठिंडा दे विद्यार्थी जो कि कानून विभाग नाल संबंधित सन ते मुलाकाती सन मनदीप रजौरा।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: स्वागत सारे ही श्रोतियां दा तुहाडे अपने रेडियो दोस्त संदीप शेरगल वालों। श्रोतियों तुसी डायल

0: और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: खाद विभाग के एडिशनल सकत्तर अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश के खाद भंडार तसली बख्श ने। उन्होंने कहा कि कच्चे माल ते तैयार खादों की उपलब्धता की नियमित तौर पर समीक्षा की जा रही है। पेट्रोल दी कीमतों में अज फिर 2.60 रुपए और डीजल दी कीमतों में 2.71 रुपए का वाधा किया गया है। पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल और डीजल दी कीमतों में 4वां वाधा है। हुण दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पंजाब राज चोण कमिशन ने कल नगर निगमां नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं हो रहीआं चोणां नूं शांतिपूर्वक अते सुचारू ढंग नाल करवाउण लई सारे प्रबंध मुकम्मल कर लए ने। वोटां कल सवेरे 8 बजे तों शामी 5 बजे तक पैणगीआं ते वोटां दी गिणती 29 मई नूं होएगी। चोण कमिशन ने लोकां नूं शांतिपूर्वक अते बिना किसे डर दे वोट पाउण दी अपील कीती है। इस दौरान पंजाब पुलिस भी चोणां नूं अमन अमान नाल निरपक्ष अते पारदर्शी तरीके नाल निपटे चाढ़न लई पूरी तरह मुस्तैद है। राज सरकार ने कल नगर निगमां नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां दे मद्देनज़र छुट्टी दा ऐलान कीता है। तमिलनाडु विच विरोधी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके दे सीनियर नेता एस पी वेलुमणी की अगवाई वाले असंतुष्ट धड़े दे 3 विधायकों ने विधानसभा तों अस्तीफा दे दिता है ते सत्ताधारी पार्टी तमलिगा वेत्री कड़गम टीवीके विच शामिल हो गए ने। यह घटनाक्रम ऑल इंडिया अन्ना डीएमके अंदर चल रही धड़ेबंदी दरम्यान आई है। श्री वेलुमणी की अगवाई वाले धड़े ने विधानसभा में टीवीके सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। अस्तीफिया तो बाद एआईए डीएमके की ताकत घटकर 44 रह गई है। दोवां धड़िया कोल हुण 22-22 विधायक ने। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पुलादपुर महाबलेश्वर सड़क से अंबेनाली घाट सैक्शन से एक वाहन के 1500 फुट डूंगी खड्ड में डिगण नाल 8 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ऐतवार सवेरे ड्राइवर का वाहन से कंट्रोल न रहने कारण वापरिया। मुसाफर दा पोली तो सतारा जा रहे सन। ईरान के विदेश मंत्रालय के बुलारे इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका नाल चल रही गलबात फिलहाल टकराव नूं खत्म करन ते केंद्रित है ते परमाणु मुद्दे ते हालात तक चर्चा नहीं हुई। इस तो पहले अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ते अमरीका विचकार शांति समझौते बारे गलबात जारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप किसी भी अजिहे समझौते नूं स्वीकार नहीं करनगे जिस नूं ओह सही नहीं मानते। अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा कि पछमी एशिया टकराव को खत्म करने की चल रही कोशिशों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है पर शांति का रस्ता आसान नहीं है। पाकिस्तान के उत्तर पछमी इलाके में आज एक तेज रफ्तार बस के सड़क किनारे खड़ी एक होर बस नाल टकरा जाने कारण घट्टो घट 17 लोगों की मौत हो गई थे, 5 होर जख्मी हो गए। पुलिस ने दसा कि हादसा मरदान जिले में सवात एक्सप्रैस वे से वापरिया। अंत में चोणवीं खबरें एक बार फिर सुन लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे साल 2026 लिए 66 उगी शख्सियतों पदम पुरस्कार प्रदान किए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रीख्या में वार बार आ रही खामियों पर चिंता प्रकट करदे कहा कि दुख की गल है कि नैशनल टैसटिंग एजेंसी ने पिछले पेपर लीक तो कोई सबक नहीं सीख्या। सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजन और मेहमानबाजी संस्थाओं में बाल मजदूरी से सख्त पाबंदी लाने की मांग करने वाली एक जनहित पटीशन से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। ते पंजाब विच नगर निगमां नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं पालके होण वालीआं चोणां लई सब प्रबंध मुकम्मल ने। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा। साडा अगला बुलेटिन पालके सवेरे 8:30 ते होएगा। नमस्कार।
2: हुणे तुसीं सुण रहे सी पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ते स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:40 हो रहे ने। एक बार फिर तो पेश है प्रोग्राम शाम सुहानी का रहिंदा बाकी हिस्सा जिस दे तहत तुसी डायल करोगे 0164-22-4331 ते इस नंबर नू एक स्रोता ने डायल कर लिया जी। साडे नाल जुड़ चुके ने, जानदे उन्हां बारे। हैलो
3: हैलो सत श्रीकाल जी।
2: सत श्रीकाल बई जी। सिकंदर सिंह संदोहा तो बई
3: जी।
2: वाह जी वाह, की हाल चाल है तुहाडा?
3: बहुत वधिया जी, वधिया। गर्मी च खड़े हां।
2: गर्मी जी खड़े हो, क्या बात है। हुण तां सूरज जिहड़ा छिप जांदा टाइम जी नाल।
3: वैसे हुण तां हवा भी थोड़ी ठंडी हो गई है
2: जी। जी जी, कल भी थोड़ा जिहा ठीक सी शाम जी नूं होया मौसम।
3: हां जी,
2: रात भी थोड़ी जी ठंडी रही है ते शाम नूं ते सवेरे तक ठंड हुंदी है हल्की जी।
3: हां जी, दुपहरे लज्जत आ जांदी जी पैण
2: दी। दुपहरे तां फिर शिखर ते हो जांदे आ सूरज भाई साहब।
3: हां जी,
2: सूर्य देवता जी है ना। ते बई जी, अज जुड़े हो ते किन्हां दी आवाज़ च गीत सुनना पसंद करोगे पहलां तां इह दस्सो।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मन तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।

0: और श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
2: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
3: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
2: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
1: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण

विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुर्जोर्जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुर्जोर्जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा

0: छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
0: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर।
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंको जनाब।
0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: मे आई कम इन सर?
6: यस, कम इन।
9: सर,
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर,
6: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
9: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
9: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
6: गो अहेड यंग मैन।
9: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को

0: उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
2: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
2: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
2: फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
2: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
2: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए। आ, आ, आ,

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ NCERT ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 1291ਵੀਂ ਕੜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 8:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। स्वागत सारे ही स्रोतियां दा तुहाडे अपने रेडियो दोस्त संदीप शेरगिल वालों। प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत विच अज तुसी सुनोगे तुहाडे द्वारा भेजे खतां ते आधारित फरमाइशां दे गीत जो कि तुहानू सुनवाए जाणगे तुहाडी पसंद ते पंजाबी गीत। सो पहला गीत तुहाडे सारयां दे नाल सांझा करदे हां कुलदीप मानखोरां दी आवाज़ दे विच ते उस तों बाद तुहाडे नाल साडे दोस्तां दे नाम सांझे करांगे।

0: प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजी शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 26 मई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत, जिथे जीवन दे गूढ़े सच, करम धर्म अते आत्मिक ज्ञान नाल भरपूर ए विशेष प्रस्तुति तुहानू जोड़ेगी श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल संदेश नाल।
1: जी स्रोतो, इस संदेश तो पहला जो गीत तुसी कुलदीप मानकुरा की आवाज़ दे विच सुन रहे सी, उसनू सुनन दे लई साडे कोले फरमाइशां वक् वक् स्रोतियां दीआं पहुंचियां सन, जिन्हां दे विच मलोड़ तो साडे दोस्त कुलवंत गिल, जसवंत गिल ते रमन गिल, इन्हां तो इलावा जिला श्री मुक्तसर साहब दे पिंड मोलां तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोलां, दर्शन बराड़, मलकीत घुड़ियाणा ते नाल ही मलकीत सिंह गुणियाणा मंडी तो, ते नाल ही दर्शन सिंह जी पथराला तो, अते मलकीत सिंह जी कुड़ियाना तो। सो ये कई नाम शामिल हुए ने। और इस तो इलावा मलोट पिंड तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमनदीप गिल।

0: ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री।

0: से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
6: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33

0: प्रतिशत के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है

0: दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोद पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
3: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
2: The legendary Indian violin maestro, Dr.

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मोहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके।

संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निखरे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका

0: 1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।
1: पहले

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

लाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर।

0: आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

कब तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में। सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत। आती है तो आ जाए मौत बेशक कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।